बाँचिरहोस्, मर्न परे मै मरौँ, मेरो देश बाँचिरहोस्, मेरो देश बाँचिरहोस्।

0: नशे चरस के तेरे नखरे ना किसी के बस के ले बिवनी टपकड़ बीट पकड़ जोर लगा थोड़ा कसके
1: लगा के तेरे।

पटक लौंडो के दिल पटक पटक ससे जाए अटक अटक आता माझी सटक सटक बम तेरा गुदे खाए कमर पे तेरी बटर फ्लाए बॉडी तेरी मक्खन जैसे खाने में बस तू बटर खाए कमोन बेबी टिकट टिकट काटू तेरी टिकट टिकट खेलता नहीं क्रिकेट क्रिकेट पर ले लूं तेरी विकेट विकेट।

ढंग तेरा मुझसे चोरी चोरी बातें करे अंग अंग तेरा तेरे लिए कुछ भी कर लूंगा तेरी मैं हर लूंगा कोई भी पीड़ा पागल हुआ तेरे पीछे जैसे दिमाग में कीड़ा लगे मीठी जैसे शक्कर शक्कर आजा चला ले चक्कर चक्कर बाकी के लौंडे पकड़ पकड़ I am the baddest motherfucker.

लगती है, वो तितलियां साथ रखती है, मेरी दुनिया अपार लगती है, जब कंधे पे मेरे वो हाथ रखती है। प्यार को खोने नहीं दूंगा, तुझे खुद से जुदा मैं कभी होने नहीं दूंगा, खुशी के आंसू और बात है, लेकिन तुझको मैं वैसे कभी रोने नहीं दूंगा।

0: करते एंड करा दे बेमत बीबी फिसलन हाथ से यार वो साथ जो पहली से साथ थे और से देखो लड़का है ये अजूबा
1: टाइम चेक इट्स 3 PM
2: अहिले दिउँसोको 3 बजेको छ।